गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो पर। आपका दोस्त आरजे अंकित है यहाँ पर कार्यक्रम लेके नॉनस्टॉप गपशप। दोस्तों, नॉनस्टॉप गपशप में रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ 11 बजे तक। जब भी हम आते हैं, एक विषय लाते हैं, एक लाते हैं टॉपिक, करते हैं उसी विषय पर आप लोगों से ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ रहा था, थोड़ा सा इंटरनेट घाट रहा था, घाटते घाटते मुझे मालूम पड़ा कि आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो मैं

क्यों ना फूड पर ही बात की जाए, क्योंकि फूड तो है सभी को पसंद आता, खाना किसको पसंद नहीं आता दोस्तों। तो मैं सोच रहा था आज आप लोगों से करूं इसी बारे में बातें। लेकिन बातें क्या होंगी, ऑब्वियसली अगर फूड सेफ्टी के बारे में बातें हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों से मैं एक चर्चा करूंगा इसी बारे में। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी के बारे में अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप लोग कभी रेस्टोरेंट खोले फ्यूचर में, या फिर कोई स्ट्रीट फूड्स की दुकान खोले, क्रेडी लगाएं, तो आप ऐसा क्या क्या करना चाहेंगे और ऐसी क्या चीज़ें करना चाहेंगे जी आपके आपके जो फूड है वो काफ़ी सेफ तरीके से लोगों के पास पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और लोग उसका आनंद उठाए, लोग उससे हेल्दी रहे ना कि बीमार पड़े। आइए दोस्तों हमसे शेयर करिए, हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341 पर, इस पर आइए, हमें बताइए कि आप ऐसे कौन कौन से कदम, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहेंगे कि जब भी आप कोई फूड की रेस्टोरेंट खोले, रेस्टोरेंट या कोई स्ट्रीट फूड्स की दुकान खोले, तो आप ऐसे कौन कौन से कदम उठाएंगे जो लोगों तक, जो ग्राहक आपके पास आए खाने पीने के लिए, आप उनको ऐसी क्या चीज़ खिलाएंगे ताकि फूड पूरा सेफ्टी तक लोगों तक पहुँचे। चलिए करते हैं आज का एक कार्यक्रम शुरू इस पहले ट्रैक के साथ, देखते हैं पहला कॉलर कौन आएगा हमारे साथ बात करने।

फिल्म भूत बंगला से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में, ट्रैक प्रीतम का, कंपोजिशन कुमार के थे बोल। दोस्तों भारत की खाद्य मिलावट केंद्रित प्रणाली से विज्ञान आधारित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की ओर बदलाव को उजागर करता है, जिससे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा संचालित किया जा रहा है।

फिल्म हाईवे से दोस्तों यार रहमान की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक यार रहमान का एक कंपोजिशन और इरशाद कामिल के थे बोल। 10:13 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में 11 बजे तक। और दोस्तों आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आप कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं या स्ट्रीट फूड्स की दुकान खोलते हैं तो आप ऐसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स रखेंगे, कौन कौन से सुरक्षा रखेंगे आप अपनी दुकान में?

0: अपने रेस्टोरेंट में, ताकि लोगों तक आपका जो खाना है बना हुआ वो सेफ पहुंचे, एकदम सुरक्षित पहुंचे। और मेरे साथ एक दोस्त आ चुके हैं लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: जी मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: पारस जी, वेलकम टू माई शो नॉनस्टॉप गॉसिप शो। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक पर?
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, बोलिए।
1: अगर मैं कभी रेस्टोरेंट या फूड स्ट्रीट खोलूं तो सबसे पहले मैं शुद्धता का ध्यान दूंगा।
0: बिल्कुल,
1: पौष्टिकता और मतलब जो सामान बनेगा वो अच्छा होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: तो इससे क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहेंगे और कस्टमर भी बढ़ेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
1: जहाँ तक खाना का ज्यादा लाभ में नहीं किफायत में बेचने का प्रयत्न करूंगा और मिट्टी का सामान का प्रयोग करना चाहूंगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके।
0: थैंक यू पारस जी, थैंक यू आने के लिए फोन लाइन पे और हमारे साथ शेयर करने के लिए कि आप क्या क्या मेजर्स रखेंगे अगर आपने कभी फ्यूचर पे ऐसे रेस्टोरेंट खोला तो। आप भी दोस्तों आ सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341 पर, यहाँ पर आइए और करिए हमसे बातें। और दोस्तों, प्रगति के बावजूद नियामक अंतराल और पुरानी प्रथाएं अब भी मौजूद है जिनमें पुनः जांच और सुधार की आवश्यकता है।

पीके से स्वरूप खान की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक अजय अतुल का, कंपोजिशन स्वनंद, किरकिरे के थे बोल। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद 2019 से प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है, एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पहचानने और प्रबंधित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने एवं कार्यवाही हेतु प्रेरित करना है।

जी हाँ जी हाँ, मुझे पता जुमे की रात नहीं है, आज है संडे, लेकिन फिर भी सुना रहा था आपको ये ट्रैक फिल्म किक से मीका सिंह और पलक मुछल की आवाज में। भारत का खाद्य सुरक्षा ढांचा कैसे विकसित हुआ? प्रारंभिक कानूनी ढांचा 1954 से 2006 तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 ने खाद्य सुरक्षा को दियाधरी दृष्टिकोण से देखा, जिसमें भोजन या तो मिलावटी था या नहीं, बिना विभिन्न प्रकार के संदर्शकों के बीच अंतर किए या जोखिम के स्तर को ध्यान में रखे। इसमें उपयोग की मात्रा, आहार संबंधी प्रवृत्तियां या संदर्शकों को भिन्न भिन्न जोखिम के रूपरेखाओं का ध्यान नहीं रखा गया था।

0: फिल्म जय हो से दोस्तों शान, श्रेया घोषल और शादाब साबरी लेकर आए थे ये ट्रैक। साजिद वाजिद का संगीत, समीर रंजन के थे बोल। और एक दोस्त आ चुके लाइन पे, करते उनसे बात। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: गुड मॉर्निंग भैया, मैं जीतू बात कर रहा हूँ
0: विस्तार से। गुड मॉर्निंग जीतू, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो आज के इस विषय के बारे में?
1: सभी सुनने वालों के लिए है, जितना मतलब जो जो रेस्टोरेंट जो या फिर जो होते हैं ना, जैसे कि कोई ढाबा खुले होते हैं तो उनके लिए सबसे जरूरी है। तो मैं बोलना चाहूंगा जैसे कि जैसे मान लीजिए मैं जैसे खोला हूँ रेस्टोरेंट कहीं पर से या छोटा मोटा जी कहीं पर भी, तो सभी पहले मैं ध्यान ये दूंगा कि जैसे कि कई लोग हम देखते हैं कि वो लोग जो है जो होता है तो कचौड़ी बनाता है या फिर आपका वही कोई सब्जी बनाता है। कचौड़ी में हम देखे हैं ज्यादातर जैसे कचौड़ी बनाया है आज का जो है वही पे तो क्या है रख देता है ऑयल जो हुआ सरसों ऑयल तो उसको क्या आता है उसको रख देता है, फिर अगले दिन क्या करता है उसको ही मतलब डाल के बेस में ही जो है कचौड़ी जो है छाने लगता है,
0: उसी को इस्तेमाल करता है।
1: हाँ इस्तेमाल करने लगता है और जिसे इस्तेमाल करने से क्या होता है आपका बहुत खराबी होगा। हम लोग ये नहीं देखने जाते हैं, जो खाने वाला कस्टमर है वो देखने नहीं जाएगा कि मतलब आज का है कि कल का है, ये कचौड़ी बना हुआ है बस वो खाना है। लेकिन अब उसमें यदि आपका ये मतलब देखने तो नहीं जा रही हो कल का है कि आज का, लेकिन जैसे कि कल का जो होता है ना तो जैसे बहुत दिन का होता है, जैसे दो तीन दिन का जैसे होता है तो वो चार्ज होने पर क्या होता है ना वो तो खराबी करेगा आपका जो है लीवर है ना जो होता है वो खराबी हो जाएगा। मतलब तो इसके मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं यदि खोलूंगा छोटा मोटा कोई ढाबा तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा है ना।
0: बिल्कुल सही बोल रहे हो जी, तो बिल्कुल सही।
1: ऐसे करने से क्या है कि आपका हम देखिए दूसरों को हम हानि नहीं दे सकते है ना, एक दिन तो हम ही इंसान है वो भी इंसान है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: ये चीज जितना हो भैया और जितने भी हमारे जो दोस्त लोग है यदि उनका है तो ये चीज को मतलब ठीक कर ले, मैं ही बोलना चाहूंगा आज के टॉपिक के बारे में।
0: थैंक यू जी, तो आने के लिए ऐसे ही आते रहो और हमसे जुड़ते रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो। और दोस्तों सबको बता दो कि 10:33 AM हो चुका है, आरजे अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और आज मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में और आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ अगर आपने कभी रेस्टोरेंट्स ढाबा या कभी स्ट्रीट फूड की दुकान खोली तो आप ऐसे कौन कौन से सुरक्षित या सुरक्षा मेजर्स लेंगे या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे ताकि आपका जो खाने का सामान है वो लोगों तक एकदम सही और सुरक्षित पहुंचे। और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम

0: 2006 द्वारा सुधार इस अधिनियम ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना की, जिससे भारत ने मानकों की वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया। FSSAI ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियम के अनुरूप एक जोखिम आधारित ढांचा प्रस्तुत किया, जिसमें कीटनाशक के लिए अधिकतम अवशेष सीमा, MRL खाद योजक के लिए स्वीकार्य दैनिक सेवन ADA तथा पशु औषधि अवशेषों और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त तत्वों के लिए मानक निर्धारित किए गए। वर्ष 2020 में भारत के खाद्य सुरक्षा विनियम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लगभग समक्ष हो गए थे। और आप भी दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं इस विषय पर बात, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। Non-stop Gupshup, 107 FM Rainbow Par. Non-stop Gupshup, 107 FM Rainbow Par. FM Rainbow Par.

0: फिल्म काईपू से दोस्तों अमित त्रिवेदी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ट्रैक अमित त्रिवेदी का संगीत और स्वानंद केरकेरे के बोल। और एक दोस्त आ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: हाँ नमस्ते, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: नमस्ते, पायल बोल।

फिल्म क्वीन से दोस्तों आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी की आवाज में ट्रैक। कंपोजिशन खुद अमित त्रिवेदी का था और अनविता दत्त के थे बोल। अब बात करते हैं दोस्तों खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या है। अधिकांश सुरक्षा मानक अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर आधारित होते हैं जो भारतीय आहार पैटर्न, कृषि पद्धतियां या पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारतीय पारंपरिक आहारों के माध्यम से संदूषकों के संचयी संपर्क या आकलन करने के लिए समग्र कुल आहार अध्ययन TDS का अभाव है। स्थानीय विश्व विज्ञान संबंधी अध्ययनों की कमी के कारण सटीक जोखिम का आकलन में बाधा आती है।

फिल्म ये जवानी या दीवानी से दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक प्रीतम का कमलेश अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल। एमआरएल और एडीए जैसे तकनीकी शब्द आम जनता के लिए समझने में कठिन होते हैं। भारत में वर्तमान खाद लेबलिंग प्रणाली असंगत है और अवसर समझने की कठिन होती है। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग FOPL की अनिवार्य न बनाए जाने के कारण उपभोक्ताओं के लिए किसी उत्पाद में उच्च मात्रा में नमक चीनी या वसा की पहचान कर पाना कठिन हो जाता है। भारतीय पोषण रेटिंग यानी INR अभी भी स्वैच्छिक और इससे उच्च स्टार रेटिंग के बावजूद पोषण गुणवत्ता निम्न होने की संभावना होती है, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है।

फिल्म लुटेरा से दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक स्वानंद किरकिरे की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य की भी आवाज में। संगीत से सजाया था अमित त्रिवेदी ने, बोल से सवारा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म रांझना से, और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी संडे। सुनते रहिए साथ ही 107 FM रेनबो, और मैं मिलूंगा आप लोगों से वापस से बहुत जल्द।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर।
2: कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप 107 पर और आकाशवाणी यानी कि प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। आपके साथ हूं मैं संचिता। रंगीन पर्दे की दुनिया से चमकते ख्वाबों की गली तक खबरों का मसालेदार जायका, जी हां, लाए हम आपके लिए खास तड़का। गॉसिप, ग्लैमर और सिनेमा का मजा हर पल मिलेगा इस कार्यक्रम में जिसका नाम है तीन का तड़का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गीत के साथ और गीत के उस पार हम मिलेंगे बहुत सारे खबरों के साथ। 3:05 27 सेकंड कार्यक्रम तीन का तड़का।

0: वरुण रोहन ने लिखा इस गीत को, अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया, फिल्म का नाम है बधाई हो। साशा तिरुप्रति, नकाश अजीज और अमित त्रिवेदी की आवाजों में सुन रहे थे इस गीत को। कार्यक्रम है
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, वरुण 7 FM रेनबो पर टीम का तड़का।
0: तो लगाए तड़का 3:09 और 47 सेकंड इमरान हाशमी ने पूरी की जो आवारापन 2 जिसकी शूटिंग वो कर रहे थे, फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई जब ये फिल्म अब रिलीज होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं कार्यक्रम 3 का तड़का के साथ और मैं हूं संचिता। इस हफ्ते बॉलीवुड से एक ऐसी खबर आई है जिसने रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों के प्रीमियर को उत्साहित कर दिया। अभिनेता इमरान हाशमी ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। राजस्थान और दक्षिण पूर्व एशिया की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट हुई इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। फैंस खास तौर पर फिल्म के संगीत और इमोशनल कहानी को लेकर बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब सबकी निगाहें इसके ट्रेलर और अगस्त में होने वाली रिलीज पर टिकी है। माधुरी दीक्षित की ओटीटी वापसी, मां बहन बनी चर्चा का केंद्र। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित इस हफ्ते फिर सुर्खियों में रही। जून के पहले सप्ताह में उनकी नई डार्क कॉमेडी सीरीज मां बहन ओटीटी पर चर्चा का बड़ा विषय बनी। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती बताई जा रही है जिसकी जिंदगी अचानक रहस्यमयी मोड़ लेती है। लंबे समय बाद माधुरी को नए अंदाज में देखने के लिए दर्शक बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा, माधुरी हमेशा कुछ नया लेकर आती है। उधर करिश्मा कपूर की दमदार वापसी, ब्राउन ने बढ़ाई उत्सुकता और अब बात एक शानदार कमबैक की। अभिनेत्री करिश्मा कपूर जून के पहले सप्ताह में अपनी नई क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्राउन को लेकर चर्चे में रही। कोलकाता की पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी रहस्य अपराध मनोवैज्ञानिक तनाव से भरपूर बताई जा रही है। दर्शकों के बीच सबसे बड़ी उत्सुकता ये है कि लंबे समय बाद करिश्मा एक गंभीर और गहरे किरदार में दिखाई देगी। फिल्मी गलियारों में इसे उनके करियर की एक नई पारी माना जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे गीत के साथ। आपको बता दें कि करिश्मा इससे पहले डेंजरस इश्क नामक एक फिल्म में उन्होंने ऐसे ही कुछ सनसनीखेज वापसी की थी। तो

तो फिलहाल मीका सिंह और नीति मोहन की आवाज बादशाह हो है फिल्म का नाम। मनोज मुंतशीर ने लिखा इस गीत को और अंकित तिवारी ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है तीन का तड़का। 3:12 आप हैं संचिता के साथ।

0: द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: कार्यक्रम तीन का तड़का, इसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता के रेनबो चैनल पर और साथ ही साथ प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। आपके साथ हूं मैं संचिता। 3:18 राज रिबूट से अरिजीत सिंह की आवाज, कौसर मुनीर ने गीत लिखे और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का। 3:22 आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों के साथ। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस से एक बड़ी खबर, रणवीर सिंह फिर से। अभिनेत धुरंधर 2 द रिवेंज ने अपने लंबे थिएटर रन के बाद भी चर्चा बटोरने जारी रखी है। जून के पहले सप्ताह में फिल्म ने हिंदी सिनेमा के कई बड़े रिकॉर्ड्स के करीब पहुंचकर नया इतिहास रचा। फिर से इतना ही नहीं, फिल्म का नया रॉ एंड अनदेखा कट ओटीटी पर रिलीज होने से दर्शकों में फिर उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने ऐसे साल की सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्मों में भी इसे गिना। अगर आप घर बैठकर मनोरंजन का मजा लेना चाहते हैं तो जून का पहला हफ्ता आपके लिए खास रहने वाला है। इस सप्ताह बॉलीवुड से जुड़ी कई नई फिल्मों और वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। और जैसा कि मैंने कहा, माँ बहन का जिक्र किया, माधुरी दीक्षित की माँ बहन, करिश्मा कपूर की ब्राउन और कई ऐसे ड्रामा थ्रिलर दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रहेगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब दर्शक सिनेमाघरों के साथ साथ ओटीटी रिलीज को भी उतना ही गंभीरता दिखाने वाले हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 एफएम रेनबो पर। 107 एफएम रेनबो पर।

मधुबंती बागची, जैस्मिन सांडलास, फिल्म का नाम धुरंधर। शाश्वत सचदेव ने संगीतबद्ध किया, जैस्मिन सांडलास और शाश्वत सचदेव ने इसे लिखा।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो
1: पर। रघुकुल रीत सदा चलिया।
2: श्रेया घोषाल, वैशाली महादेव, कलंक है फिल्म का नाम। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल को प्रीतम ने संगीतबद्ध किया। 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का, 3:29।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: 107 FM Rainbow पर परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। भारत सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी और सड़क पर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के आसान और सस्ता लोन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी एक विशेष माइक्रो क्रेडिट योजना। इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका विस्तार अब मार्च 2030 तक कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी ने रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। विक्रेता आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते थे जो कि लॉकडाउन के दौरान नष्ट हो चुका था। पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी का क्रेडिट उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने में मददगार रहा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं जैसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या फिर सूक्ष्म वित्त संस्थान या फिर स्वयं सहायता समूह। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कारोबार को फिर से शुरू करने या बढ़ाने के लिए चरणों में ऋण प्रदान किया जाता रहा। बात करते हैं पहले ट्रांच यानी कि पहला लोन बिना किसी गारंटी की ₹10,000 तक का लोन। दूसरा लोन यानी कि दूसरा ट्रांच पहला लोन समय पर चुकाने पर ₹20,000 तक का लोन मिल सकता है और तीसरा ट्रांच यानी कि तीसरा लोन दूसरा लोन समय पर चुकाने पर ₹50,000 तक का लोन योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। ब्याज में छूट दी जा रही है। समय पर लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को सरकार द्वारा 7% यानी कि 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन भी दी जा रही है। डिजिटल भुगतान जैसे कि UPI का उपयोग करने वाले विक्रेताओं को कैशबैक रिवॉर्ड की सुविधा मिलती है। लोन चुकाने की अवधि 1 साल यानी कि 12 मासिक किश्तों तक आती है। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। चलिए बात करते हैं पात्रता के मानदंड के बारे में। आवेदक को रेहड़ी पटरी या सड़क किराने जो है किनारे ठेला लगाकर छोटा व्यवसाय करने वाला जो स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए। आवेदक के पास स्थानीय निकाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल द्वारा जारी किया गया वेल्डिंग सर्टिफिकेट या फिर पहचान पत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना हेतु पात्र व्यक्ति होना चाहिए। खोखा चलाने वाले छोटे व्यवसायी ग्रेट पकौड़ा या फिर ब्रेड पकौड़ा, मोमो या फिर जो खाने पीने का सामान बेचते हैं वेंडर्स, चाउमीन आदि, अंडे बेचने वाले, सड़क के किनारे स्टेशनरी सामान बेचने वाले कारीगर, सभी प्रकार के छोटे खुदरा दुकान वाले कारोबारी जो हैं कारोबारी, नाई की दुकान चलाने वाले या फिर जूता पॉलिश बनाने वाले, मोची या फिर पान की दुकान या कोई भी रेहड़ी पर फल बेचने वाले, सबको ये लोन उपलब्ध हो सकता है। आधार कार्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। बैंक खाता विवरण जिसे हम पासबुक कहते हैं वो होना चाहिए या फिर आपके पास वेडिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए। पीएम स्वनिधि

0: विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूंजी रन तक पहुंच प्रदान करता है, जो उनके देशव्यापी तालाबंदी के बाद अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बहुत मदद करता रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है, रनों के डिजिटल पुनर्भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को पुरस्कृत करने का एक तंत्र सुनिश्चित करके डिजिटलकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। ये बाद की मांगों पर कैशबैक उच्च रन प्रदान करके रणों के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पीएम स्वनिधि योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न होने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सब्सिडी सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण देने वाली संस्था को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन करेगा। अगर इच्छित लाभ की बात करें यानी कि बेनिफिट्स की बात करें तो विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण मिल सकता है, जिसे एक वर्ष की समय अवधि में मासिक किश्तों में ठीक किया जा सकता है। ये योजना कैशबैक से जॉइंट है, संलग्न है, माध्यम से जो है कैशबैक के माध्यम से प्रति माह जो है 100 रुपये तक की राशि तक डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है। ऋण के समय पर जल्दी चुनौती पर विक्रेता जो है रन सीमा बढ़ाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एक और पॉइंट ये है कि रन की समय पर जल्दी चुकौती पर त्रैमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जो माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रतिवर्ष की दर से इंटरनेट सब्सिडी जमा हो जाएगी और रन की जल्दी चुकौती पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हम बात कर रहे थे परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना के बारे में।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। रेनबो।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर
2: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन ऐप पर भी। 3:47। आगे बढ़ेंगे न्यूज चंक्स के साथ अनन्या पांडे और विक्रांत मैसी की। नई थ्रिलर ने बढ़ाया रोमांच। बॉलीवुड में नई जोड़ी और नई कहानी हमेशा उत्सुकता जगाती ही है। जून के पहले सप्ताह में अनन्या पांडे और विक्रांत मैसी की आगामी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जी हां, फिर से को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। फिल्म की शूटिंग मुंबई और ऊटी के कुछ हिस्सों में पूरी होने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ी हुई है और बताया जा रहा है कि कहानी रहस्य और भावनात्मक तनाव से भरपूर होगी। दर्शकों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो रही है। दोनों कलाकार पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। किस तरह का जादू बिखेरने वाले हैं, ये आगामी दिनों में हमें पता चलेगा। बॉलीवुड के कंटेंट किंग कहे जाने वाले आयुष्मान खुराना जून के पहले सप्ताह में अपनी नई सोशल ड्रामा फिल्म को लेकर चर्चे में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट लगभग तय कर ली गई है और जल्द आधिकारिक घोषणा हो सकती है। खास बात यह है कि फिल्म समाज के एक गंभीर मुद्दे को मनोरंजन के साथ जोड़कर पेश करेगी। फैंस का कहना है कि आयुष्मान हमेशा अलग विषय चुनते हैं और यही उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है। अभिनेत्री सारा अली खान इस हफ्ते अपनी नई फिल्म के कारण चर्चे में है। जून के पहले सप्ताह में खबरें आई हैं कि एक बायोग्राफिकल ड्रामा में नजर आ सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने खास तैयारी भी शुरू कर दी है। इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार ये किरदार उनके पिछले काम से बिल्कुल अलग हो सकता है। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी नई इमेज को लेकर काफी उत्साहित हो रहे हैं। कई लोगों ने इसे सारा के करियर का एक नया मोड़ भी बताया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गीत के साथ। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल है। श्रेया घोषाल की आवाजों में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा और प्रीतम ने इसे संगीत से सींचा। कार्यक्रम तीन का तड़का, आप जुड़े हुए संचिता के साथ।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाली ट्रेलर्स में शामिल है कंगना रनौत अभिनीत भारत भाग्य विधाता। 2 जून को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अस्पताल कर्मचारियों की बहादुरी को दिखाया गया है। कंगना एक नर्स के दमदार किरदार में नजर आई और सोशल मीडिया पर ट्रेलर को इमोशनल और पावरफुल प्रतिक्रिया मिली। तो चलिए इसी के साथ इजाजत दीजिए संचिता को इस कार्यक्रम से, लेकिन 5:20 पर फिर से FM रेनबो नहीं लेकिन FM गोल्ड पर जरूर आपसे फिर से रूबरू होंगे लेकर कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स। तब तक सुनते रहिए इस गीत को, जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज़। बाला है फिल्म का नाम, प्रिया सरैया ने लिखा, सचिन जिगर ने इसे संगीतबद्ध किया।

धीमे धीमे जाने की अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:57 और 3 मिनट बाकी हैं। भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। कंगना की वापसी होने वाली है जून के पहले हफ्ते में।

0: টেলে লয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बे गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ
1: जादू की बारात। वन ओ सेवन एफएम रेनबो पर यादों की बारात 7:05 और 20 सेकेंड। जून के खुशबू संग आई है यादों की ये बारात, फिर से सजते हैं फिर पर्दे पुराने, जगती है बीती हर बात। वो फिल्में जो जून में आई बन गई दिल की धड़कन, किस्से गाने संवाद उनके आज भी देते हैं स्पंदन। छुपे हुए कुछ राज तो थे ही, कुछ अनसुनी सी बातें हर ट्रिविया के संग लौटेगी वो सुनहरी सी रातें। तो चाहिए आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सफर पर बीते लम्हों के साथ, जहां सिनेमा की दुनिया में बसती है यादों की बारात। यादों की बारात के सफर को आगे बढ़ाएंगे गीत के साथ और शुरुआत करेंगे जिस फिल्म से। वो फिल्म बहुत पहले रिलीज हुई थी और मई के अंत में और जून के शुरुआत में, विजय बेनेडिक्ट, उत्तरा केलकर, सारिका कपूर की आवाज, अनजान ने गीत लिखे थे और बप्पी लहिरी ने इसे संगीतबद्ध किया था। वो कौन सी फिल्म है, आवाज ही काफी है, गीत ही काफी है। तो चलिए सुन लेते हैं इस गीत को और फिर बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात, आप हैं संचिता के साथ।

0: चलिए सेलिब्रेट करते हैं अनजान साहब को, बप्पी लहिरी को, सेलिब्रेट करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के इस एक्ट को, और सेलिब्रेट करते हैं डांस डांस को जिसने 40 साल पूरे कर लिए हैं इंडस्ट्री में।
1: यादों की बारात।
0: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर कार्यक्रम है यादों की बारात, 7:16 और 6 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। 1987 की ये फिल्म जो कि रिलीज हुई थी मई के एकदम लास्ट में और जून के शुरुआती हफ्ते में। डांस डांस को अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर इमेज का एक स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूएशन कहा जा सकता है। हालांकि दोनों फिल्मों की कहानी बिल्कुल अलग थी। 1980 में मिथुन डांस बेस्ड म्यूजिकल मनोरंजन वाले जो सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे, यानी कि डांसिंग एक्टर के रूप में ज्यादा जाने जाते थे। निर्माता निर्देशक चाहते थे कि ऑडियंस को फिर से स्टेज परफॉर्मेंस, रिवेंज ड्रामा और एक एनर्जी जो कि म्यूजिक में और एक्ट में दोनों एक साथ देखने को मिले। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की जो पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी में मिथुन की डांसिंग इमेज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया और फिल्म का नाम ही डांस डांस है, जिससे डिस्को एरा फैंस जो है तुरंत कनेक्ट कर सके इस फिल्म से। फिर बात करते हैं स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल की ये आखिरी रिलीज फिल्मों में एक कह सकते हैं। 1987 में बहुत कम लोग जानते थे कि स्मिता पाटिल की मृत्यु जो है 1986 में हो चुकी थी, और इसलिए ये उनकी पॉस्थमस रिलीज में गिनी जाती है। फिल्म में उन्होंने राधा का किरदार निभाया, जो कहानी में एक बहुत ही इमोशनल एंकर का काम करता है। दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मिता जैसी सीरियस पैरेलल सिनेमा एक्ट्रेस का एक कमर्शियल सिनेमा डांस म्यूजिकल ड्रामा में होना उस समय बहुत ही अनयूजुअल बात है। क्रिटिक्स ने बाद में लिखा कि उन्होंने बहुत लिमिटेड स्क्रीन पे जो है स्क्रीन टाइम में भी जितना भी किया उतना इमोशनल डेप्थ जोड़ देना किसी फिल्म में बहुत मुश्किल था। बप्पी लहिरी ने फिल्म के म्यूजिक को एक अंतर्राष्ट्रीय डिस्को साउंड देने की कोशिश की। डांस डांस का सबसे बड़ा आकर्षण उनका म्यूजिक था। संगीतकार बप्पी लहिरी ने सिंथेसाइजर्स, ड्रम्स, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का भारी इस्तेमाल किया ताकि फिल्म जो है एक ग्लोबल डिस्को ट्रेंड जैसी लगे। कुछ एक गीत जो आप सुनने वाले हैं, डांस डांस, जुबी डुबी, जुबी जुबी या फिर सुपर डांसर जैसे जो गीत हैं, यूथ ऑडियंस में बेहद लोकप्रिय हुए। और बप्पी लहिरी उस समय वेस्टर्न डिस्को इन्फ्लुएंस को इंडियन मेलोडी के साथ साझेदारी करके लाना चाहते थे ऑडियंस के सामने। ये फिल्म उस स्टाइल का बड़ा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम मान सकते हैं। चलिए इसी जादू को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं हम फिल्म डांस डांस की। अलीशा चुनाई की आवाज, अनजान के बोल, बप्पी लहिरी के संगीत निर्देशन में है ये गीत कार्यक्रम

0: मेरा खो गया।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: जादू की बारात। पर यादों की बारात। यादों की बारात में हम बात कर रहे हैं फिल्म डांस डांस के बारे में, जिसने अप्रोक्सीमेटली लगभग 40 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। फिल्म की कहानी जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उनके लिए मैं बता दूं, हम डांस डांस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं कार्यक्रम यादों की बारात में। फिल्म की जो कहानी है वो प्रतिशोध और एक म्यूजिक कंपटीशन को जानबूझकर मिलाया गया। डायरेक्टर बब्बर सुभाष केवल डांस फिल्म नहीं बनाना चाहते थे इसे, इसलिए स्क्रीन प्ले में फैमिली ट्रेजेडी, प्रतिशोध और स्टेज कंपटीशन जैसे कुछ तत्व जोड़े गए। कहानी में भाई बहन की एक म्यूजिकल जर्नी को विलन कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिक्स कर दिया गया ताकि इमोशनल एंगेजमेंट जो है लोग जो है इस फिल्म के साथ बने रहे। 1980 में बॉलीवुड में म्यूजिकल रिवेंज ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ करती थी और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से डांस डांस की खासियत थी कि ये म्यूजिक स्टोरी का एक डेकोरेशन नहीं था बल्कि एक बहुत ही ऊर्जावान फोर्स था, एक ड्राइविंग फोर्स था। यही कारण है कि फिल्म कॉन्सर्ट स्टाइल एनर्जी के लिए याद किया जाता है। फिल्म में मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी को मेकर्स ने फ्रेश

0: अपील के तौर पर प्रस्तुत किया। मंदाकिनी उस समय ऑलरेडी राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद काफी लोकप्रिय थी। डायरेक्टर चाहते थे कि रोमांस जो है एक डांस परफॉर्मेंस के बीच होते हुए एक सब प्लॉट बने रहे, इमोशनल एक नरमी जोड़ा उन्होंने। दिलचस्प ये रहा कि ऑडियंस ने उनकी इस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पसंद किया, जिससे फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग्स की जो पॉपुलैरिटी है और भी बढ़ी और मिथुन और मंदाकिनी की जोड़ी आगे आप कमांडो में भी देख पाए। FM रेनबो पर कार्यक्रम है यादों की बारात। हम बात कर रहे हैं डांस डांस फिल्म के बारे में, जिसने 40 साल पूरे कर लिए। विजय बेनेडिक्ट और अलीशा चिनाय की आवाज, अनजान के बोल को बपी लहरी ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारात का तीसरा गीत।
1: डियर ऑडियंस, आज हम आपको चांद पर ले जा रहे हैं। ये देखिए ये रॉकेट। इस रॉकेट से एक खूबसूरत महबूबा अपने महबूब के साथ चांद पर उतरकर प्यार की मस्ती।
0: एक डांस कंपटीशन दिखाया गया है रोमांस प्लॉट के साथ साथ, और यही है वो परफॉर्मेंस।
2: हाय डार्लिंग, आई वांट टू डांस विद यू। Dance, dance of love, dance on the moon.

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जादू की बारात।
1: FM रेनबो पर यादों की बारात 7:38। सफर पर निकले थे डांस डांस नामक इस फिल्म के साथ, जिसने 40 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। डांस डांस का संगीत 80 के दशक की इटालो डिस्को शैली और मॉडर्न ट्रैकिंग, जी हां, जैसे प्रसिद्ध कलाकारों से प्रेरित है। जुबीडुबी की मुख्य धुन जो है ब्रदर लुई गीत की नकल मानी जा रही थी। गायिका अलीशा चिनाई ने जुबीडुबी में अपने पहले प्लेबैक गायन के चरणों में से एक किया और चैरियट्स ऑफ फायर और स्टार ब्रदर्स के थीम को आकस्मिक संगीत के रूप में शामिल किया गया था इस फिल्म के साउंडट्रैक में। गीत दिल मेरा तोरोना अंग्रेजी बैंड UB40 के डार्क डोंट ब्रेक माई हार्ट से काफी हद तक प्रेरित था। सभी गानों के बोल अनजान ने लिखे थे और सभी गानों का संगीत जो है बप्पी लहरी ने तैयार किया था। 2009 में सौरवी देव

वर्मा द्वारा उनके पहले एल्बम मेहरबान सौरवी पर गीत जूबी जूबी का एक रीमेक बनाया गया, जिसका संगीत हरप्रीत सिंह और अजय सिंघा ने जो है म्यूजिक एंटरटेनमेंट का लेबल लगाकर उसे रीमेक किया। मूल रिलीज के तकरीबन 30 साल बाद ऐसा हुआ, जिंदगी मेरी डांस है को फिर से खोजा गया और निर्देशक असीम अहलूवालिया ने 2017 की गैंगस्टर फिल्म डैडी में अर्जुन रामपाल के अभिनय के साथ इसे एक नया जीवन मिला। गाने की पुनर्रिलीज एक बड़ी सफलता थी और ये उस वर्ष के शीर्ष गानों में से एक बन गया। सिस्टरस्तान के अनुसार डैडी में निर्देशक असीम अहलूवालिया ने बब्बर सुभाष की फिल्म डांस डांस से बपी लहरी की रचना जिंदगी मेरी डांस है को उपयुक्त श्रद्धांजलि दी, ऐसा जो है क्रिटिक्स ने कहा। लेकिन एक विडंबना ये थी कि जिंदगी मेरी डांस है को बब्बर सुभाष की फिल्म डांस डांस के बाहर रखा गया था, हालांकि ये उस समय विनाइल एल्बम रिलीज में शामिल किया गया था। डांस डांस की साउंडट्रैक जूबी जूबी का एक और गाना रोचक कोहली द्वारा पुनर्निर्मित किया गया और फिल्म नाम शबाना में इसे दोबारा यूज किया गया, जिसे सुकृति कक्कर द्वारा दोबारा गाया गया। 2022 की बात है, जूबी जूबी को फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर के लिए रीमेक मिला, जिसे जहरा एस खान और यश नार्वेकर ने गाया था। संगीतकार तनिष्क बागची और गीतकार कुमार थे। यह साबित करता है कि एक गीत या फिर एक फिल्म जब बनती है तो उस मेकिंग के पीछे, उस बने हुए फिल्म को इतिहास तब बन जाता है, इसे हम दोबारा तब जब हम इसे बार बार लेकर आते हैं अपने प्रेजेंट टाइम में, अपने वर्तमान में, और ऐसा ही हुआ इस फिल्म के साथ भी। आगे बढ़ेंगे उसी गीत जिसकी चर्चा अभी तक कर रही थी अलीशा चिनाई की आवाज, फिल्म का नाम डांस डांस जूबी जूबी। कार्यक्रम है यादों की बारात।

7:48 और 18 सेकंड 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात संचिता के साथ। जुबी जुबी गीत ने फिल्म की पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया था। रिलीज के बाद इंस्टेंट क्रेज बन गया था। सिंगर अलीशा चनाई की वेस्टर्न स्टाइल एनर्जेटिक वोकल्स और डिस्को अरेंजमेंट ने इसे 1980s का यूथ एंथम जैसा बना दिया। दिलचस्प बात है कि मेकर्स को अंदाजा नहीं था कि सॉन्ग इतनी कैची निकलेगी, और लेकिन इसकी जो कल्ट पॉपुलैरिटी की उम्मीद उन्हें नहीं थी वही हो गया। स्टेज लाइटिंग की बात करें या फिर चमकीला कॉस्ट्यूम, फास्ट कोरियोग्राफी, इसे देखने में एक मेमोरेबल लगता है। बाद में ये ट्रैक इंडिया के साथ साथ कई फॉरेन मार्केट्स खासकर सोवियत यूनियन में भी बेहद लोकप्रिय हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म की सोवियत यूनियन में जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। डांस डांस भी उन बॉलीवुड फिल्मों में शामिल थी जिन्हें यूएसएसआर में काफी, जी हाँ, उस जमाने की बात है, यूएसएसआर में काफी पसंद किया गया। सूत्रों के अनुसार मिथुन के डांस स्टाइल और अंडरडॉग हीरो इमेज ने कहा वहां के ऑडियंस को खास तौर पर आकर्षित किया तो था ही। डिस्को डांसर की जो भारी सफलता

उन्हें मिली डांस डांस से पहले इंटरनेशनल एक क्यूरोसिटी बन गए थे। कई फिल्म हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती 1980s में सोवियत ब्लॉक में सबसे लोकप्रिय इंडियन स्टार्स में से एक थे। डायरेक्टर यानी निर्देशक बबर सुभाष चाहते थे कि डांस डांस सिर्फ फिल्म ना लगे बल्कि एक कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस जैसा फील हो। इसके गाने भी कुछ ऐसे ही हैं, इसलिए डांस सीक्वेंसेस को डिलिबरेटली जानबूझकर थिएट्रिकल बनाया, ब्राइट लाइट्स लगाए, स्मोक इफेक्ट्स दिए, कोऑर्डिनेटेड कुछ साझेदारी वाले कुछ बैकग्राउंड डांसर्स को सामने लाया और ड्रामेटिक कैमरा एंगल्स तो थे ही। कई परफॉर्मेंस को स्टेज कॉन्सर्ट के जो एस्थेटिक्स होते हैं ना उसको ध्यान में रखकर शूट किया गया ताकि ऑडियंस थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस जैसा मनोरंजन पा सके। यही विजुअल एनर्जी फिल्म की पहचान बन गई। स्मिता पाटिल आमतौर पर तो सीरियस रोल करती हैं, आर्ट हाउस सोशली जो सामाजिक रिलेवेंट फिल्मों के लिए वो जानी जाती थी, पैरेलल सिनेमा के लिए जानी जाती थी। डांस डांस जैसी कमर्शियल डिस्को एंटरटेनर में उनका होना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत सरप्राइजिंग था। सूत्रों के अनुसार मेकर्स चाहते थे कि कहानी में इमोशनल एक क्रेडिबिलिटी बने, इसलिए स्मिता को कास्ट किया गया। और फिर क्रिटिक्स ने बाद में कहा कि सीन्स में जो भी उन्होंने तत्व दिए वो इमोशनल ग्राउंडिंग उन्होंने पेश की वो वाकई कमाल के थे। आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ, अलीशा चिनाय और विजय बेनेडिक्ट की आवाज, फिल्म डांस डांस। आप जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो है यादों की बारात।

107 FM रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की बारात, आखिरी गीत, और आगे बढ़कर भी हम इसी कार्यक्रम को लेकर रहेंगे 8:02 पर, इसी फिल्म के साथ रहेंगे। तब तक के लिए ये गीत अलीशा चिनाई की आवाज में। फिल्म वही डांस डांस।

0: जादू की बारात।
1: FM रेनबो पर यादों की बारात। खबरों से रूबरू होने के बाद हम वापस आते हैं। इस वक्त 8:06:42 हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ और हम बात कर रहे थे जिस फिल्म की, वो है डांस डांस। इस फिल्म ने 40 साल पूरे कर लिए हैं इंडस्ट्री में। सबसे यूनिक बात यह थी कि डिस्को कल्चर और मेलोड्रामा का एक बहुत ही रेयर मिश्रण था। 1980 की कई डांस फिल्म्स केवल म्यूजिक परफॉर्मेंसेस तक सीमित नहीं रही। डांस डांस की खासियत यह थी कि इसमें फैमिली इमोशंस, रिवेंज रोमांस और स्टेज कंपटीशन को एक साथ जो है मिलाया गया। डायरेक्टर ने डिस्को सॉन्ग्स को कहानी का हिस्सा बना दिया। सिर्फ मनोरंजन तक ही नहीं, ये वजह है कि ऑडियंस को सॉन्ग यानी गीत और कहानी दोनों कनेक्टेड महसूस हुए। फिल्म हिस्टोरियंस मानते हैं कि फिल्म डांस डांस 1980 की बॉलीवुड डिस्को म्यूजिकल ट्रेंड का एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है जिसने म्यूजिक ड्रिवन कमर्शियल सिनेमा को एक नई पहचान दी। डांस डांस की विजुअल आइडेंटिटी अगर हम देखें, उसके चमकदार कॉस्ट्यूम्स, मिथुन चक्रवर्ती के जैकेट, शाइनी पैंट्स, ग्लिटर वाले हेवी स्टेज आउटफिट्स की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो इंटरनेशनल डिस्को स्टार्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है। 1980 में डिस्को फैशन ग्लोबल ट्रेंड था, इसलिए मेकर्स चाहते थे कि फिल्म विजुअली मॉडर्न, ग्लैमरस तो लगे, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस वाले सीन्स में कॉस्ट्यूम्स को लाइटिंग इफेक्ट्स के हिसाब से डिजाइन किया गया था ताकि कैमरा पर जो स्पार्कल है, जो चमक है, वो ज्यादा दिखे। यही स्टाइलिंग बाद में मिथुन की डिस्को इमेज का एक हिस्सा बना। फिल्म का एनर्जेटिक ट्रैक जिसके बारे में बात कर रही थी, सुपर डांसर, केवल एक डांस नंबर नहीं था बल्कि इसे खास तौर पर मिथुन चक्रवर्ती की स्टेज कैरिज्मा दिखाने के लिए तैयार किया गया था। संगीतकार बप्पी लहरी ने इसमें बहुत ही दमदार बीट्स और सिंथेसाइजर बेस्ड रिदम रखे, लाइव कॉन्सर्ट्स जैसा फील कराने के लिए। सूत्रों के अनुसार कोरियोग्राफी को डेलिबरेटली बहुत फास्ट पेस्ड रखा गया था ताकि मिथुन की जो सिग्नेचर मूव्स है ना, वो ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग एक प्रभाव डाले। रिलीज के बाद ये गीत डांस कंपटीशन में काफी कहे तो हर वक्त इस्तेमाल हुए। आगे बढ़ेंगे सुपर डांसर इसी गीत के साथ। बप्पी लहरी और अलीशा चिनाई की है आवाज। अनजान के बोल को बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारात। आप जुड़े हुए संचिता के साथ 8:09।

डांस डांस की कहानी हो या एक सुपर डांसर की कहानी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की कहानी। जी हाँ, इस फिल्म ने सुपर डांसर के तौर पर ही मिथुन दा को इस इंडस्ट्री में फेमस कर दिया, पूरे जग में फेमस कर दिया। फिल्म के विलन ट्रैक में मेलोड्रामा को जानबूझकर जो है बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था। डायरेक्टर सुभाष बब्बर ये चाहते थे कि 1980 बॉलीवुड स्टाइल मेलोड्रामा को पूरी तरह से एम्ब्रेस या लेना चाहते थे, इसलिए विलन और जो प्रतिशोध के जो तत्व रखे गए हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक रूप में रखे गए, बजाय कि उसे ड्रामा बनाया जाए। लाउड कन्फ्रंटेशन, इमोशनल सेटबैक्स और स्टेज राइवलरी जो सीन्स थे उसे बहुत ही हाइटेंड टोन में दिखाया गया। शूट के दौरान ऑडियंस इमोशनली जुड़े रहे।

इस कहानी के साथ। और उस समय ऐसी ओवर द टॉप जो स्टोरी टेलिंग थी ना, उस वक्त मास एंटरटेनर्स की एक पहचान हुआ करती थी। सिंगल स्क्रीन ऑडियंस इसे खूब एंजॉय भी करते थे। डांस डांस का बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता था, बप्पी लाहिरी ने सीन्स के बीच सिंथेसाइजर हैवी स्कोर का इस्तेमाल किया। ये जो डर डर डर डर की आवाज आप देख रहे हैं, ताकि पूरे फिल्म में डिस्को एटमॉस्फेयर बना रहे, खासकर स्टेज एंट्री के समय। इमोशनल विक्ट्रीज, राइवलरी मोमेंट्स, ये सब तो थे ही। क्रिटिक्स ने उस दौरान कहा था कि बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म को एक फिल्म नहीं रखा, बल्कि एक इवेंट बना दिया, म्यूजिकल इवेंट जैसा फील दिया, जो उस दौर के जो डांस फिल्में हुआ करती थी, यानी डांस बेस्ड फिल्में हुआ करती थी, वो एक अनकॉमन स्केल माना जाता था डांस डांस को। फिल्म की सबसे बड़ी स्पेशल फीचर थी म्यूजिक को स्टोरी का सेंट्रल हीरो बनाना। डांस डांस की यही थी यूनिक बात। आगे बढ़ेंगे एक और गीत कह सकते हैं, या गीत के माध्यम से कहानी कह सकते हैं। विजय बेनेडिक्ट, अलीशा चनाए और साथियों की आवाज। फिल्म का नाम डांस डांस। कार्यक्रम है यादों की बारात।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात, और आप जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं संचिता के साथ, और एक और कहानी, एक कहानी, एक फिल्म जिसका नाम है डांस डांस, 40 साल पूरे कर लिए इस फिल्म ने इंडस्ट्री में, और आज इस सफर में शामिल है हमारे साथ। जैसा कि मैं बता रही थी कि डांस डांस की यूनिक बात यह है कि म्यूजिक केवल सॉन्ग्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। कैरेक्टर्स की सक्सेस, राइवलरी, रोमांस, इमोशनल स्ट्रगल, कुछ भी कह लीजिए, सब स्टेज परफॉर्मेंस और सिंगिंग करियर से जुड़े थे। 1980 बॉलीवुड में कई म्यूजिकल फिल्में आई, लेकिन डांस डांस ने डांस कॉम्पिटिशन और कॉन्सर्ट कल्चर को एक ड्रामा, मेन स्ट्रीम ड्रामा बना दिया। यही वजह है कि इसे केवल डिस्को मूवी नहीं, बल्कि इंडिया के म्यूजिक ड्रिवन कमर्शियल सिनेमा में माना जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स तो वही थे, स्टेज पर डांस सीक्वेंसेस, लेकिन इन्हें शूट करना आसान नहीं था। डायरेक्टर बब्बर सुभाष चाहते थे कि ऑडियंस को रियल लाइफ कॉन्सर्ट जैसा एक्साइटमेंट महसूस हो, इसलिए कई सीन्स में बड़े क्राउड सेटअप्स लगाए गए, सिंक्रोनाइज डांसर्स लाए गए बैकग्राउंड के लिए, इलैबोरेट लाइटिंग की गई, और इतना ही नहीं, कैमरा मूवमेंट्स भी स्टेज पर इतने फास्ट किया गया कि सारे जो एनर्जी है उसे कैप्चर कर सके। बहुत ही प्लान के मुताबिक इस फिल्म को बनाया गया।

मूवी एक म्यूजिकल सीक्वेंस बन गई। मंदाकिनी की इमेज राम तेरी गंगा महली के बाद इनोसेंट और ट्रेडिशनल हीरोइन की बन चुकी थी, लेकिन डांस डांस ने उसे बदल दिया। कंपैरेटिवली एक मॉडर्न ग्लैमरस और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अवतार से उन्हें ढक दिया गया था। कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग, मेकअप या फिर स्टेज प्रेजेंस, कुछ भी कहे, एक अर्बन फील आ गई थी उनके किरदार में। एक कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया था इस फिल्म ने। 1980 के कैसेट बूम के दौर में डांस डांस का जो साउंड ट्रैक जब आया तो कमर्शियली काफ़ी सफलता मिली कैसेट इंडस्ट्री को। जूबी जूबी, डांस डांस, सुपर डांसर, दिल मेरा तो रोना, कुछ भी हो इस फिल्म से रिलेटेड रेडियो काउंटडाउन्स में लंबे समय तक लोकप्रिय रहे। बप्पी लहिरी उस समय डिस्को साउंड के सबसे बड़े नाम बन गए। पॉपुलैरिटी ने एल्बम की सेल्स को बूस्ट कर दिया, बढ़ा दिया। कई ट्रेड ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि फिल्म की ओपनिंग ऑडियंस खींचने में सॉन्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही। और अब बात करें मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती पहले से डिस्को डांसर तो थे ही, और फिर बाद में डांस डांस ने इमेज को और मजबूत बना दिया। उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, फुल फ्लेज्ड स्टेज परफॉर्मर बना दिया। उनके एनर्जेटिक मूव्स ने डिस्को किंग बना दिया। लोग उनकी तुलना माइकल जैक्सन से करने लगे। फ्लैशी कॉस्ट्यूम्स, ऑडियंस पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी। 1980s और 90s में मिथुन को बॉलीवुड का बिगेस्ट डांसिंग सुपरस्टार माना जाता था। आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ, वो भी अलीशा चनाई और साथियों की आवाज में है। कार्यक्रम है यादों की बारात। 8:27:37 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात में आपके साथ हूं मैं, संचिता।

0: यादों की बारात। वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर यादों की बारात। डांस डांस की कहानी से निकलकर एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं, और फिल्म कौन सी है? महाभारत द गॉड फादर से प्रेरणा लेकर अनोखा मिशन फिल्म को लेकर सबसे रोचक तथ्य यह है कि निर्देशक ने इसकी कहानी में भारतीय महाकाव्य महाभारत और पश्चिमी राजनीतिक ड्रामा जैसी फिल्मों की प्रेरणा को आधुनिक भारतीय राजनीति के साथ जोड़ा। फिल्म के कई किरदारों और घटनाओं में महाभारत के पात्रों की झलक देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर सत्ता संघर्ष, परिवार के भीतर विश्वासघात और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। हालांकि फिल्म पूरी तरह किसी एक कहानी की कॉपी नहीं लगती, लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति पर आधारित एक मौलिक प्रस्तुति जरूर है। रणबीर कपूर का गंभीर राजनीतिक किरदार। ये फिल्म जो है 4 जून 2010 में रिलीज हुई, 16 साल कंप्लीट कर लिए। आदेश श्रीवास्तव की आवाज, समीर के बोल, और इसे संगीतबद्ध किया आदेश श्रीवास्तव ने ही। फिल्म का नाम राजनीति।
1: 8:39 यादों की बारात के साथ हैं आप, आपके साथ हूं मैं संचिता।

107 एफएम रेनबो पर रणबीर कपूर का गंभीर राजनीतिक किरदार फिल्म राजनीति में। इससे पहले रोमांटिक और युवा किरदारों के लिए जाने जाते थे, लेकिन राजनीति में उन्होंने समर प्रताप का गंभीर और राजनीतिक किरदार निभाया। दिलचस्प ये था कि निर्देशक चाहते थे कि रणबीर किरदार में संयम और भावनात्मक गहराई दिखाए, इसलिए उन्होंने ओवर एक्टिंग से बचने की सलाह दी गई थी। रणबीर ने कई राजनीतिक भाषणों और बॉडी लैंग्वेज पर विशेष काम किया, होमवर्क किया। ये फिल्म उनके करियर में टर्निंग पॉइंट मानी गई, क्योंकि इससे उन्होंने साबित किया कि वे केवल रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि इंटेंस ड्रामा रोल्स में भी प्रभावी ढंग से वो निभा सकते हैं। बात करते हैं अजय देवगन का एक रेस्ट्रेंड अभिनय। फिल्म में सूरज कुमार का किरदार निभाया, जो शक्ति, गुस्से और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक प्रतीक था। ये किरदार अजय देवगन ने जो निभाई, लाउड बनाने के बजाय कंट्रोल्ड और इंटेंस अभिनय शैली उन्होंने अपनाई। निर्देशक चाहते थे कि सूरज का डर उसके शब्दों से ज्यादा उसकी उपस्थिति से महसूस हो। कई दृश्यों में अजय ने कम संवादों के बावजूद प्रभावशाली अभिनय किया। यही कारण है कि उनका किरदार दर्शकों के बीच सबसे मजबूत पात्रों में गिना गया और फिल्म के राजनीतिक संघर्ष को गंभीरता प्रदान करता है। कैटरीना कैफ का राजनीतिक नेता में रूपांतरण, यूं कह सकते हैं कि फिल्म बेहद अलग अनुभव था उनके लिए। राजनीति ये जो फिल्म थी, इससे पहले वे मुख्यतः ग्लैमरस भूमिकाओं में जानी जाती थी, लेकिन राजनीति में उन्होंने एक राजनीतिक नेता का गंभीर किरदार प्ले किया। उन्होंने हिंदी उच्चारण, सार्वजनिक भाषण, राजनीतिक व्यक्तित्व को समझने के लिए विशेष तैयारी की। कई समीक्षकों ने माना कि ये उनके करियर का सबसे मच्योर अभिनय था। इंटरेस्टिंग ये है कि फिल्म में उनका किरदार कई लोगों को भारतीय राजनीति की कुछ वास्तविक महिला नेताओं की याद दिलाता है, हालांकि निर्माताओं ने किसी विशेष व्यक्ति से प्रेरणा की पुष्टि नहीं की। आगे बढ़ेंगे एक गीत के साथ। मोहित चौहान, अंतरा मित्रा की आवाज, इरशाद कामिल ने गीत के बोल लिखे और इसे प्रीतम ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है यादों की बारात, आपके साथ हूं मैं संचिता। 8:48

यादों की बारात में हम बात कर रहे हैं फिल्म राजनीति की। 8:52 और बात करेंगे नाना पाटेकर का अनुभवी राजनीतिक सलाहकार ने ब्रज गोपाल का किरदार निभाया, जो राजनीति के चाणक्य जैसे राजनीतिकार की तरह दिखाई देता है। निर्देशक ने माना था कि इस किरदार के लिए मजबूत संवाद अभिनय की जरूरत थी, इसलिए नाना पाटेकर आदर्श विकल्प थे। दिलचस्प यह था कि संवादों की डिलीवरी इतनी प्रभावशाली थी कि वे फिल्म की पहचान बन गए। सेट पर वे अपने संवादों की लय और ठहराव पर विशेष ध्यान देते थे, जिससे उनका किरदार और विश्वसनीय लगा। फिल्म की शूटिंग कई वास्तविक लोकेशंस पर की गई ताकि राजनीतिक का वातावरण जो है असली लगे। चुनावी रैलियां, भीड़, पोस्टर और भाषणों को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया। हजारों जूनियर आर्टिस्ट को रैली सीन्स में शामिल कर दिया गया था ताकि वास्तविक चुनावी माहौल का एक अनुभव हो। दिलचस्प ये था कि कई लोग शूटिंग के दौरान इसे असली राजनीतिक सभा समझ बैठे थे। निर्देशक चाहते थे कि दर्शकों को ऐसा महसूस हो कि वे किसी काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि भारतीय राजनीतिक की वास्तविकता देख रहे हैं। अर्जुन रामपाल के किरदार को एक नई पहचान मिली। पृथ्वीराज प्रताप का किरदार निभाया था उन्होंने। करियर की सबसे सराही हुई परफॉर्मेंसेस में से एक कह सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे नेता की भूमिका निभाई जो सत्ता और पारिवारिक दबाव के बीच उलझा हुआ था। कम लोग जानते हैं कि अर्जुन के किरदार की जो बॉडी लैंग्वेज थी और राजनीतिक का जो कॉन्फिडेंस था, विकसित करने के लिए विशेष तैयारी की थी। फिल्म के बाद आलोचकों ने माना कि इस प्रदर्शन ने अर्जुन को केवल स्टाइलिश एक्टर की छवि से आगे नहीं बढ़ाया, एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। और मनोज बाजपेयी की क्या ही कहें, वीरेंद्र प्रताप का किरदार निभाया जो फिल्म के सबसे आक्रामक और महत्वाकांक्षी पात्रों में से एक था। मनोज ने अपने किरदार की आक्रामकता को बहुत नियंत्रित ढंग से निभाया ताकि ओवर ड्रामेटिक ना लगे। उन्होंने संवाद और गुस्से भरे दृश्य दर्शकों को बेहद प्रभावशाली लगे और क्रिटिक्स का, समीक्षकों का मानना था कि सबसे यादगार मोमेंट्स में मनोज वाजपेयी की जो उपस्थिति है वो वाकई ड्रामेटिक थी। आगे बढ़ेंगे गीत के साथ और ये गीत है सोनू निगम की आवाज में। नहीं, हाँ, सोनू निगम की आवाज वैसे तो दो गीत हम आपको सुना सकते हैं क्योंकि यही आखिरी गीत होने वाला है। 5 मिनट है आपके और मेरे दरमियान। स्वानंद किरकिरे ने लिखा, शांतनु मोइत्रो ने इस गीत को संगीत से सींचा। प्रणव विश्वास, हमसिका अय्यर, स्वानंद किरकिरे के आवाजों में राजनीति फिल्म से ये आखिरी गीत आप सुनेंगे। इजाजत दीजिए, इसी के साथ ऐसे ही किसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ, बहुत सारे गीतों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा और बने रहे।